ये लगे लाओ तो वो तो सबसे हो गया ना अपनी लाओ चाव करने में ना वो मिति वाले पेन एक पता सिले ले रही हूँ ना वो मैं सिले ले रही है ना ब्लू ने तमानी की वाले में अम्मा के चंग में उन्हें संग ना तमालू तलू तुम्हें सुलाओ मिगिट्सी तो सायक समिन